0: kayak kecilitan dari dorma dong.
1: Ayo kerupuk nih kayak kayak di sini.
2: Aja di sini. Ayo
3: करो
4: चलो क्या तो क्या
5: आप क्या करें हमारी जाए मरी जाए मरी जाए